0: Selfie Trading Lanka Limited, Sri Lanka Mahabankway, Avasaralat Balapatra Labi Mudal Samagamaki.
1: Seve Niyutu Rajasevaka Obata Wagema, Vishramika Rajasevaka Obata, then Vishesha Milakata BYD Wahanayak, 0112-125-125 BYD Karusaru, Seveta Pasasemak, Jeevitayata Senasemak, Kondesa Sahithayi.
2: Anchorpedia Pro MFGM, Atha Lokuwata Hitana Pottange Smart Sodanama.
3: Itana Ami Pass Matao. किन दूर जाना मुश्किल हो उच्चरा क्लंग में नहीं पा आई एम द रसन बेरी वे हित का उपन कान नम हंगी में वेन वेन सत्य दिन पाहे मा मंदारम रे हाथ टे नित अहन्ना अहन्ना
4: FM अनुपहा FM anu hatarai dasama ata net FM divina pura
5: velava oba veta gena enne
6: den hitena parakkuwata LB finance ekin nivasanayak oba wenuwenma wennu sabadata kalmana karuwek inna nisa rastiyaduwak nathuwa LB nivasanaya den satiyen ganna puluwan itin leasing ekak gatta wegenma housing loan ekak ganna obath langama LB finance ekata enna
7: velava savasa 6:30

आदरणीय तरंगा अवरुद्ध विश देखा के करी जीवत होना आदरे क्या ने मकाद के लदन होना है इतिकना वो कड़ू किया ना इतना आदरे कर पुहादे वे थकता

मांगवाट गोड़ा कादरे करना मैं के देवियन इस रह वैन्नोने पुरुंदा अग्नि में मुझे तो देवियन दान ना मां पुरु करना है केला